आजी दे तो पोट भरी पुरी मनाल तो भरी हळू हळू चला कोनी कोना सीन बोला आजी दे तो पोट भरी पुरी मनाल तो भरी स्वर अजून कमी कर तुका मने सांडा घाटे तेने नका भरू पोटे आजी दे तो पोट भरी पुरी मनाल तो भरी यौंत प्रवेश मम वाच मिमां प्रसूताम संजीवयत्खिल शक्ति धर स्वदाम अन्य उच्च हस्त चरण श्रवण त्वगादिं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं महायोग पीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुंडरीकाय धातु मुनीन्द्रैः समागत तिष्ठन् तमानंद कंदम परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम पांडुरंगा करु प्रथम नमन दुसरे चरण संताचिया त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तार उभा बाजू सद्गुरु दास तुका अलंका प्रिरम्य सिंहासनस्थम पदाम्भोज तेजस्पृति प्रदेशम विधींद्रादिदेवे सदा स्तूयमानं समाधिस्थ मूर्तिं भजे ज्ञानदेवं नमो ज्ञानेश्वरा निवृत्ति उदार

अधिराजा वैराग्यवंतम सुविचार युक्तम नमामि जोगम शिरसा गुरुंतम नमो सद्गुरु तुकया ज्ञान दीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ति नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ति सेवेला की सेवक झालो तुमच्या लागलो निज चरणा अहो स्वामी तुकया देवा यावर

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

अपने पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे आ...

आज है अपने दिल में वो आज उधर भी होगी, जो आज है अपने दिल में वो आज उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।